वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

रेडियो एनआरएन 99.1 समयको ख्याल राखौं। 7 बज्यो। नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो साँझ पख।